मुंह में राम और बगल में छुरी, लागे ऐसो का ये नगर के ये जिसको गले लगाए उसका तंबा हटिया। मुंह में राम और बगल में छुरी, लागे ऐसो का ये नगर के ये जिसको गले लगाए उसका तंबा हर है। पते की ये बात है कि ना बोलो, बोलो बोलो बोलो, है पते की ये बात है कि ना बोलो। हे हे कहते हैं लोग राजा मुझे कहते हैं लोग, अरे कहते हैं लोग, अरे थोड़ा तो सब में ही झोल है लेकिन यहाँ तो झोल जाल है। कहते हैं ये दुनिया गोल है लेकिन यहाँ तो गोलमाल है। अजनबी सा है सबका चेहरा, कुछ बताओ पता पता, कौन चाहता है कौन मामा।

फैशन बढ़ेंगे, कपड़े घटेंगे, मालिक ही जाने कितने रहेंगे। मौसम का ये खेल, जुल्फे छटाओ, नाखून बढ़ाओ।

था राम का फकीर, और ये ठाट बाट, ये झंडे, इससे तो हम अकेले में निपटेंगे।